सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

106.3 FM. 106.3 Radio Olive Gio Binda. अब सुनिए

0: कर फट जाए।
1: यू आर लिसनिंग टू कथास नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास अब सुनिए।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड से जाने व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, एकदम सुबह सुबह से रोमांटिक सा माहौल हो गया है ना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, दिनेश आगी जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। मंडे का दिन, अगस्त 10th की शुरुआत एकदम पॉजिटिविटी और अच्छे वाले मूड के साथ करना है और ये कंटिन्यू रहेगा अगले 4 घंटे क्योंकि क्या बवाल गाने लाइंड अप है यार। This brand new track coming up your way in a bit और साथ में थोड़ा रेट्रो हो रहा है।
1: महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा
0: शोले से महबूबा एंड देन

जिस दिन हम ये बात समझ गए ना, काफी आसान हो जाएगी जिंदगी। All these amazing tracks are lined up for you in this hour. और भी बहुत सारे हैं, सब सुना दूंगी तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचेगा ना, इसलिए एक स्नीक पिक दे दिया है। बाकी फिलहाल आप मुझे बताएं, मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताएं कल का दिन कैसा रहा एंड अभी कैसे हैं। एक गुड मॉर्निंग भेज दो प्यारा सा, ऐसे दिन बन जाता है मेरा। ऑलरेडी कुछ गुड मॉर्निंग्स मुझे यहाँ पे आ चुके हैं और इंतजार कर रही हूँ, फटाफट से भेज दो 3311063। Those who are traveling to work right now, if अगर आप अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो फोन उठाओ फटाफट से, मैसेज कर दो। अगर ड्राइव नहीं कर रहे हो तो ठीक है, ड्राइव कर रहे हो तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच कर मुझे मैसेज कर देना। और जो अभी उठे हैं, रेडी हो रहे हैं काम के लिए, अगर इस बीच वक्त निकल पाए तो कर देना जी, नो प्रॉब्लम है। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल, जियो बिंदास।

0: बावरा समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: बिंदास, मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: एमवी को शाहिद मलिक की आवाज में, मनमर्जिया मूवी से दरिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस मूवी। अभिषेक बच्चन ऑब्वियसली लाइक विकी कौशल वाज तो ऑन अनदर लेवल, पर अभिषेक बच्चन वाज अमेजिंग इन दिस वन। नहीं देखिए तो आई वुड सजेस्ट वॉच इट। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, रीजा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और आइए गुड मॉर्निंग मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। नाजनी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, इनडीड। और संधु जी का भी गुड मॉर्निंग आया, मे योर डे स्टार्ट विद अ ब्राइट स्माइल, अ हैप्पी थॉट्स, जियो बिंदास, हरपाल संधु फ्रॉम द कंसेक्रेट। एंड अबरार जी का भी मैसेज आया है, टुडे का फुल एसे उन्होंने एब्रीवेशन दिया है, थिंक पॉजिटिवली, ऑफर काइंडनेस फ्रीली, ड्रीम बियॉन्ड लिमिट्स, ऑलवेज स्टे होपफुल, यू आर ब्लेस्ड, गुड मॉर्निंग। दैट्स ब्यूटिफुल ना एक्चुअली। एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, थॉट फॉर टुडे, बीइंग हम्बल मीन्स रिकग्नाइजिंग दैट वी आर नॉट ऑन अर्थ टू सी हाउ इम्पॉर्टेंट वी कैन बिकम, बट टू सी हाउ मच डिफरेंस वी कैन मेक इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। एग्जैक्टली, हम अक्सर इसी में खो जाते हैं ना कि मैं इम्पॉर्टेंट बन जाऊँ, मुझे सब याद रखें, पर हम जब इस कोशिश में लग जाते हैं ना तो वी फॉरगेट अबाउट अदर्स। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे एंड यू नो लाइक किसी भी चीज़ में, इवन व्हेन गिविंग अ स्माइल टू अ स्ट्रेंजर, दैट गोज अ लॉन्ग वे, वो आपको याद रखवाएगा। आपका जो नेचर है, द वे यू ट्रीट पीपल, द वे यू बिहेव विद पीपल, वो आपको यू नो लंबे समय तक याद रखवाएगा, ना कि आपने कितनी सक्सेस पा ली है, ठीक है। और बिलाल जी का भी गुड मॉर्निंग आया है, एंड देन ट्रांसपोर्ट लिखा है, प्लीज़ अपना नाम लिखिए, इन्होंने भी मुझे गुड मॉर्निंग भेजा है। इमरान जी का भी मैसेज है, वेकी वेकी साउंड क्वीन, ओए होए क्या बात है, गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट मेक्स एवरी लिसनर स्माइल बिफोर देयर फर्स्ट कप ऑफ कॉफी, दैट इज सो स्वीट, आई होप आई एम एबल टू डू दैट फॉर यू गाइस। एंड जसा जी का भी गुड मॉर्निंग है, देन आई हैव गॉट मुबीन जी, इन्होंने आपने जो भी इमेज भेजी है ना मुबीन जी, वो नहीं ओपन हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एंड मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग जर रही है यार, रुको अभी ला रही हूँ यार, ये आ गया।
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: ओए होए,
1: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस,
0: हां जी,
1: मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस,
0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, टू झूम इन द वॉइस ऑफ नसीबुलाल एंड आबिदा परवीन जी, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास।
2: Awesome.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

लक्ष्य मूवी से ईशान की आवाज में मैं ऐसा क्यों हूँ, ये क्वेश्चन मैं भी खुद से बहुत पूछती थी। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, त्रिशा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। वाहब जी और एमजे का गुड मॉर्निंग, आई गुड मॉर्निंग टू यू टू गाइज, आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे, बहुत बढ़िया दिन जाए। और व्हेन आई सेड ना कि आई यूज टू आस्क माई सेल्फ मैं ऐसी क्यों हूँ, सो मुझे हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आई एम लाइक कि यार उसको ये मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला है, यू नो दिस कंपैरिजन थिंग, या फिर मेरे साथ ही सब कुछ बुरा होता है, यू नो कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रहना। एंड मोस्ट ऑफ अस डू दैट, द बेस्ट ऑफ अस डू दैट, हो जाता है यू नो लाइफ की जर्नी में इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं एंड इवेंचुअली सम हाउ एक परसेप्शन, एक नज़रिया बन जाता है टूवर्ड्स थिंग्स। बट मैंने रिसेंटली सीखा है एक अमेजिंग लाइफ हैक, विच इज स्टे डिल्यूजनली ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई मेरे साथ तो सब अमेजिंग ही हो रहा है, मैं हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में ही रहती हूँ, मुझे हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, आई एम इन्जॉइंग एवरी थिंग। सो वेन द यूनिवर्स इज सीइंग ना कि भाई ये लड़की तो हर चीज़ में इन्जॉय कर लेती है, तो चलो इसको और खुशियाँ देते हैं, इसे और मोमेंट्स देते हैं जिसको ये इन्जॉय कर सके। वो कहते हैं ना कि जिस भी तरह से आप अट्रैक्ट करोगे, जो भी चीज़ें आप सोचोगे, बेसिकली बिहेव करोगे, वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो दैट एक्चुअली वर्क्स, सो बी डिल्यूजनली ऑप्टिमिस्टिक मेरी जान, एंड यू सी योर लाइफ चेंजिंग। यू नो थिंक कि सब चीज़ें मेरे फेवर में ही हो रही है। इफ़ कोई चीज़ आपको लगा कि आपने ये प्लान किया है और वो उस तरह से नहीं हुआ जैसे आपने प्लान किया है, उससे बेहतर होगा, ये बिलीफ साथ में लेकर चलो और इंडीड होगा, कोई रोक ही नहीं सकता यार, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, दैट्स व्हाई आपको बता रही हूँ, ट्राई करके देख लो, फ्री है, वरना जाने दो। सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम टू स्टेट्स, चांदनिया, स्टे ट्यून्ड एंड रिवंदास।

0: तनिषा
1: कमाल खान साहब की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी किस्मत एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी दिस इज यार. मतलब जितनी भी बार देखी है ना ऐसे फूट फूट के रोई हूँ मैं इस मूवी को देख के. एंड द ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. सो क्रेजी. अगर नहीं देखी है थोड़ी बहुत पंजाबी समझते हो नहीं भी तो सबटाइटल्स आ जाते हैं. I would suggest कि देखो इसे. ठीक है. You're listening to Radio All of 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. Radio All of presents Blackboard Stories. आज का सवाल है. You just have to tell me a word जो कि letter V से victory, V for victory, V से end होता है. ठीक है. Noun नहीं चलेगा. A word you have to tell me जो letter V से end होता है. 3311 1063 पर बता दो मुझे या फिर कॉल कर दो 4444 1063 पर. Sending fresh song of the hour for you. बटवारा 1947 movie से तबस्सुम सोनू निगम और हीर की आवाज में. Stay tuned. Andrew Vindas.

0: मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या, कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ, रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे
3: Thank you.

मैं हूं ना मूवी से तो भेजो मैंने देखा ब्यूटीफुल ट्रैक द वॉइस और श्रेय घोषाल एंड अभिजीत ओनली ऑन रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहां पर रेडियो ऑल ओवर प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में मैंने सवाल पूछा था कि आपने मुझे एक वर्ड बताना है जो कि लेटर वी से एंड होता है एंड इट शुडंट बी अ नाउन ठीक है सो आई हैव गॉट वेरी फ्यू आंसर्स हियर मुझे लगा ही था बिकॉज आई वाज आल्सो थिंकिंग फॉर अ वाइल जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा आई वाज लाइक कौन सा वर्ड है कोई ना कोई तो होगा देन आई सर्च्ड ऑन इट और पता चला कि देयर इज नो वर्ड विच एंड्स विद लेटर वी इसके साथ हमेशा ई आता ही है एंड में ये कभी भी अकेला नहीं होता भले ही हम प्रनाउंस इसे वैसे ही करेंगे जैसे कि हैव गेव यू नो गिव ऑल दीज वर्ड्स दे आर प्रनाउंस्ड कि लास्ट में सिर्फ वी है पर ई होता है वहाँ पे जी हाँ सो इट कम्स फ्रॉम यू नो एंशियंट टाइम्स जब भी यू और वी सेम लेटर्स होते थे देयर वॉज नो डिफरेंस और वो सिर्फ डिफरेंट वर्जन थे सेम लेटर के लेकिन इवेंचुअली ये दोनों अपने सेपरेट इंडिविजुअल लेटर्स बन गए लेकिन जो एक हैबिट थी जो एक प्रैक्टिस थी टू यूज देम विदाउट ई वो कभी भी गई नहीं टू यूज देम विद ई सॉरी वो कभी भी गई नहीं और वो हम आज तक यूज करते हैं इट्स जस्ट अ ट्रिक देर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट दे वर लाइक हैव बोल रहे हैं तो उसके आगे कुछ तो एक साउंड है उसके लिए हम ई यूज कर लेंगे एंड इन फैक्ट यू के साथ भी यही होता है आई डू नॉट थिंक देर आर एनी वर्ड्स विच आर एंडिंग विद लेटर यू डू यू नो अबाउट दैट Well, I'm going to look for that. Or on that note, sending. Hey, Jawani, Do Ishq Ho Raha Hai movie se title track. Stay tuned and Jeevan Da.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
2: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
3: अरमान मलिक
4: नंबर
3: 106.3 FM रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: baby ko bes pasand hai.
1: विशाल डिडलानी और शालमली खुलकर की आवाज में बेबी को बेस पसंद है ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और थोड़ी वेदर की बात कर लेते हैं जी नथिंग टू लाइक अबाउट दिस वेदर यस्टरडे लाइक वो फोन में नोटिफिकेशन आती ना वेदर की सो आई गॉट दैट नोटिफिकेशन लास्ट नाइट एंड इट्स सेड कि कल 55 डिग्रीज जैसा यू नो फील होने वाला है टेम्परेचर दिस इज गोइंग क्रेजी लाइक इफ यू लुक एट द स्काई राइट नाउ यू नो इतने सुंदर स्कैटर्ड क्लाउड्स आपको नजर आएंगे और ऐसे देख के लगेगा मतलब अगर आप अपने घर की विंडो से देख रहे हैं आपको लगेगा अरे बढ़िया सुहाना मौसम होगा बाहर निकलेंगे जो ही हीट महसूस होने वाली है जो ही ह्यूमिडिटी महसूस होने वाली है इट्स ऑन अनदर लेवल सो राइट नाउ द टेम्परेचर इज 37 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 48 डिग्रीज एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट और साथ में आज का जो हाइएस्ट हो सकता है वो 43 डिग्रीज होगा लोएस्ट होगा 34 डिग्रीज बाकी अपना ख्याल रखें स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान कहीं भी जा रहे हैं तो पानी वानी इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाटएवर यू नीड ना साथ में रखिए और एकदम लाइट खाना खाइए और ख्याल रखिए अपने खाने का स्पेशली बिकॉज इस वेदर में इस खाने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं फिलहाल तो मिनिस्ट्री ने भी कुछ सजेशंस और टिप्स दिए हैं सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ आप बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रा से भी परेशानी हो गई ना मुझे अच्छा लगता है यार स्वस्थ रहा करो मस्त रहा करो सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे स्टेट योर एंड्रयू बिंदास
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है जबरदस्त

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

नादा परिंदे इज द वॉइस ऑफ मोहित चौहान, रहमान साहब का म्यूजिक, रॉक स्टार मूवी से सुना आपने ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, और भाई बधाइयां जी, बधाइयां। सो कतर के शरीफ यूनिस एंड अहमद तजान वर नेम्ड एशियाज बेस्ट मेन्स बीच वॉलीबॉल प्लेयर्स। यस, सो 25-26 सीजन के जो अवार्ड्स थे ये बैंकॉक में हुए, एंड ये फर्स्ट टाइम है कि कतरी वॉलीबॉल हैज रिसीव दिस रिकग्निशन एट द एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन अवार्ड। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग, एंड ये अवार्ड रिकोगनाइज करता है उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज को ऑब्वियसली इन द एशियन एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। दे हैव बीन डूइंग रियली अमेजिंग, कूडोज टू देम एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन to them and to Qatar, क्योंकि proud moment है यार इसी बात पे। एक celebratory गाना तो होना ही चाहिए, सज धज के टशन में रहना। Stay tuned, Anjio Vindas.

You're listening to Radio Olivino 6.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और समथिंग क्रेजी आई फाउंड आउट. सो 2010 में मारिया नाम की एक लेडी थी, अ स्पैनिश वुमन, एंड वो जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास एक नोटराइज डॉक्यूमेंट लेकर और क्लेम करती है कि जो सन है, सूरज, यस, वो मैंने खरीद लिया है, वो मेरा है, तो अब पूरी दुनिया को मुझे पे करना पड़ेगा. आई विल चार्ज ए फी बिकॉज दे आर यूजिंग माई सन, दैट इज माई प्रॉपर्टी. सो उन्होंने ना एक लूप होल निकाला बेसिकली. सो देर इज दिस इंटरनेशनल ट्रीटी जिसके हिसाब से कोई भी नेशन सेलेस्टियल बॉडीज को ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारा है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल पीपल का तो लिखा नहीं हो उसमें. सो मारिया फाउंड आउट दैट लूप होल और उन्होंने अपने नाम सन करवा लिया, बताओ. बट देन उनका जो ये क्लेम था वो इनवैलिड माना गया. एंड उनका कहना था बेसिकली कि पीपल हु आर यूजिंग सन्स एनर्जी दे विल हैव टू पे मी, एंड 20% उसमें से जाएगा पेंशन फंड में, 50% जाएगा स्पैनिश गवर्नमेंट को, 10% साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 10% एंडिंग द वर्ल्ड हंगर, और बस 10% मैं रखूंगी. जी, पूरी दुनिया का 10% वो रखेंगी, बाकी वो एक अच्छे अच्छे कॉजेस के लिए उन्होंने डिसाइड कर रखा है वहां देंगे. बट या इट वॉज फाउंड टू बी इनवैलिड और उन्हें कुछ नहीं मिला. देन पीपल वर आर्ग्यूइंग कि इतनी ज्यादा जो गर्मी हो रही है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, इसके लिए क्या हमें मारिया को सू कर देना चाहिए. एंड एक क्रेजी डिबेट इसकी वजह से शुरू हो गई थी. बट देन थिंग्स काम डाउन व्हेन मारिया अग्रीड कि ओके फाइन, आई टेक माई क्लेम बैक, रख लो तुम अपना सन. एंड राइट नाउ तो आई वुड से मारिया प्लीज ले जाओ इस सन को, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई साहब. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड PHCC के स्पेशल पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सूफियान ने सजेस्ट किया है टू ऑल द पेरेंट्स कि अगर बच्चों को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, यू नो द सिम्टम्स विच आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. इनिशियली वो माइल्ड फील होते हैं, इट कैन बी स्नीजिंग, इट कैन बी नेजल कंजेशन, नाइट टाइम कफिंग, इचिंग, स्किन रैशेज, अगर ये सब हो रहा है और ये कोल्ड और टेम्परेरी कंडीशंस में कॉमन भी होता है, बट इफ इट इज कमिंग बैक, ये रिकरिंग है, तो हो सकता है कि किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन हो. सो अगर इसे जितना जल्दी डिटेक्ट करवा लिया जाए उतना ज्यादा आसान होगा उन्हें ट्रीट करने के लिए. सो प्लीज इन चीजों को इग्नोर ना करें, हर बार इसे सीजनल फ्लू समझकर जाने न दे, ठीक है, नजरअंदाज नहीं करना है. और अगर लग रहा है कि यू नो देयर इज सम इशू दैट इट इज कमिंग बैक, प्लीज गो एंड सी द डॉक्टर एंड प्रॉपर टेस्ट एंड ऑल करवाइए. इफ इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन इट विल कीप कमिंग बैक, और जितनी जल्दी हम इसे डिटेक्ट कर लेंगे उतना आसान होगा उन्हें ट्रीट करना, एंड यू विल नो वेयर टू बी केयरफुल, राइट? सो प्लीज डू दैट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द हेल्थ ऑफ योर किड्स, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. To Bindas. Cool song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
1: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

कल हो रहा हूँ मूवी से माही वे ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ विद अस मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड ऑक्सफर्ड के एक रिसर्च साइंटिस्ट ने फ्रेंडशिप का मैप बनाया है. जी हाँ, सो इट इज़ बेसिकली सर्कल्स अंडर सर्कल. एंड जो सबसे इनर सर्कल है उसमें सिर्फ 5 लोग हैं, और जो उसका आउटर सर्कल है उसमें 15, उससे बाहर वाले में 50, और उससे बाहर वाले में 150. सो 150 ओवरऑल इज़ द पीपल यू नो यू हैव मेट इन योर लाइफ, और अक्वेंटेंस एक बार मिले हैं मे बी. देन ये जो 50 हैं इनसे कभी किसी पार्टी में मिल लिए, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई टाइप्स, सोशल मीडिया पे यू नो ऐड कर लिया. देन ये जो 15 है ये थोड़े और क्लोज सर्कल में आ जाते हैं कि जिनसे आप मे बी यू नो एक महीने में एक बार तो मिल ही लेते हैं कम से कम, या फिर 2 महीने में एक बार ऐसे मिल लेते हैं. देन जो लास्ट वाला सर्कल है जिसमें 5 हैं, वो है आपके 5 कोर पीपल. कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग होगा या फिर कुछ बहुत सैड होगा, यू विल गो टू देम कि यार तुझसे शेयर करना है, या आई नीड टू टॉक टू यू, यू नो उनसे एडवाइस लेंगे फॉर थिंग्स. एंड यू नीड दोज पीपल इन योर लाइफ. बट व्हेनेवर ये 15 वाले सर्कल में से अगर आप किसी से क्लोज होते हैं, तो इस 5 वाले सर्कल में से कोई ना कोई एक इंसान फेड होके 15 में चला जाता है, और वो 15 वाला इंसान 5 में आ जाता है. दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ. आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू राइट नाउ कि वो जो 5 कोर हैं, अगर 5 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं कोर लोग आपकी लाइफ के, आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप हर चीज शेयर करते हैं, अपनी दिल की बात खुल के कर सकते हैं, एंड काफ़ी वक्त से उनसे बात नहीं की है, गुफ्तगू नहीं की है, तो दिस इज़ योर साइन मेरी जान. कॉल देम, टेक्स्ट देम, हो सके तो मिलो उन्हें, हाँ, एंड रिमाइंड देम कि वो कितने स्पेशल हैं आपके लिए, और आप कितने लकी हैं फॉर हैविंग देम इन योर लाइफ. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।
3: इश्क

0: वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
0: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

ऋचा शर्मा, जुबीन गर्ग और सुखविंदर बाजू की आवाज में कांटे मूवी से व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक है यार, बहुत ही कमाल। तनिषा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 FM पर, बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं पर। सो वैकी विजडम में हम अहमदाबाद के कैफे की बात करेंगे। सो दिस कैफे इज कॉल्ड सेवा कैफे और इसका कॉन्सेप्ट इतना अमेजिंग है। बेसिकली यू डोंट हैव टू पे फॉर योर मील, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन पे फॉर द नेक्स्ट पर्सनस मील। लाइक अगर मैं उस कैफे में जा रही हूँ और मैंने जो भी खाया वट एवर, इट हैज़ बीन पेड बाय अ प्रीवियस कस्टमर जो मुझसे पहले आए थे, अभी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आगे वाले के लिए पे कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, इट्स टोटली योर कॉल। आप जो भी वहाँ पर देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हेल्प इन दैट कैफे, यू कैन कुक और यू कैन सर्व। इट्स कॉल्ड सेवा कैफे फॉर अ रीजन एंड इट्स अ नॉन प्रॉफिट एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज ह्यूमैनिटी में एक बार फिर से ऐसे बिलीव करवाता है सम हाउ, यू नो, काइंडनेस और ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है टोटली एंड पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट। दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक ये और भी सिटीज़ में ये खुलने चाहिए, और भी जगह पर ये वाले कैफ़ेज़ होने चाहिए, सो दैट यू नो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ काइंडनेस जो कि बहुत रेयर हो गया है आजकल, यू नो, कंपैशन एंड ट्रस्ट, ये चीज़ें लोगों में फिर से इनकलकेट हो पाए। फॉर दैट सो आई एब्सोल्युटली लव दिस कॉन्सेप्ट एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। इन केस ever you guys go to Ahmedabad, do not forget to visit Seva Cafe. Sending fresh song of the hour for you. Stay tuned on Jio Bindaas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं।

0: टास मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

केदारनाथ मूवी से देवनेगी की आवाज में स्वीट हार्ट ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और रिमाइंडर है जी आपके लिए कि फ्लैशिंग हाई बीम्स ऑन कतर एक्सप्रेसवेज कैन गेट यू फाइंड. जी हाँ, तो अगर आप किसी भी कार को थोड़ा भी ऐसे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं लाइक पास है तो अपनी जो हाई बीम है उसको थोड़ा लो कर लीजिए वरना दिक्कतें हो जाएंगी. फाइन शाइन हो जाएगा, 200 रियाल का फाइन है और एक डीमेरिट पॉइंट भी है मिस यूजिंग द हाई बीम्स के लिए. देन पेनल्टीज जो है वो और भी ज़्यादा हैवी होंगी फॉर टेल गेटिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग एंड ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस और लेन्स को क्लियर रखने का है, ऐसे इधर उधर नहीं जाने का है. वेल पीपल आर वेरी वेरी अवेयर एंड केयरफुल और बहुत समझदार हैं यहाँ पे. यू नो इतना इश्यूज आता नहीं है, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर. बाकी आप समझदार हो मेरी जान, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर रिमाइंडर्स कभी कभी चाहिए होते हैं, है ना. दैट इज़ व्हाई आई एम हियर फॉर यू. एक और रिमाइंडर मैंने आपको देना है जो मैं कुछ देर में दूंगी, सब अभी बता दूँ क्या? नहीं, अभी गाना सुनेंगे, इंतजार कर रहा है हमारा. स्टे ट्यून्ड.

0: अच्छा
1: सपने मूवी से शंकर महादेवन और के एस चित्रज की आवाज में एक बगिया में रहती है एक मैना। अरे फन सॉन्ग है यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। टेक टॉक में व्हाट्सएप के 3 ग्रुप अपडेट्स आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लीजिए। आई डोंट नो क्यों लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक तो इन्होंने एट ऑल वाला फीचर ऐड कर दिया है ग्रुप्स में, लाइक यू डो नॉट हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन ईच पर्सन, आप बस ऐट ऑल कर दे तो वो सबको नोटिफाई हो जाएगा, और इवन जिन्होंने म्यूट कर रखी है चैट उनको भी नोटिफाई होगा। तो ये बढ़िया चीज़ है, मुझे ज़रूरत पड़ जाती है मैं म्यूट कर देती हूँ। देन पोल्स जो हैं उसमें आप एक एंड डेट डाल सकते हैं, अगर आप पोलिंग यू नो वोटिंग करवा रहे हैं, किसी चीज़ का डिसीजन लेना है आपने, फॉर सम रीज़न आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, दैट टू वोटिंग, तो उस पर आप एक एंड डेट लगा सकते हैं, सो दैट यू नो एक पर्टिकुलर डेट पर आप एक कंक्लूजन पे आ जाएं, आपका एक रिजल्ट निकल आए। ये थर्ड वाला बड़ा ही स्नीकी सा अपडेट है। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ग्रुप्स हैं ना उसमें से आपको यूजुअली से 4 पीपल आर देयर इन अ ग्रुप, अब उसमें से एक इंसान से आपने चीज़ें नहीं बतानी है उसको, कि उसको थोड़ा सा साइड में रखना है अभी, और 3 लोगों ने बात करनी है उस बारे में, तब वो ग्रुप में तो कर नहीं सकते, फिर उन्हें अलग से एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उस एग्जिस्टिंग ग्रुप में से ही एक छोटू सा ग्रुप क्रिएट कर सकते हो फॉर ऑल 3 पीपल, आपको अलग से जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी जहमत कम होगी पर स्नीकी ऑप्शन है, मुझे सुन के मज़ा आ गया। तो कौन कौन ये वाला ऑप्शन यूज करना चाहता है, मैं तो ये जानना चाहूंगी, बताएं मुझे 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ ट्रियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ही करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।
4: What's up?

KK और वसंत राय की आवाज में चले जैसे हवा. व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और रिमाइंडर देने आई हूँ मैं आपको कि भाई अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है सोशल मीडिया पर तो जल्दी से कर लो, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको पता नहीं चलेगा, मिस आउट कर जाओगे तो कैसे चलेगा यार. इट इज़ ऑल फॉर यू, तो आप तक तो चीज़ें पहुंचनी चाहिए. सो रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज़ दी हैंडल, फॉलो कीजिए इफ़ यू हैवन सो फार. अगर कर रखा है तो चेकआउट कर लीजिए, अगर कॉन्टेस्ट चल रहा है तो पार्टिसिपेट कीजिए उसमें. और कुछ वीडियोज़ वगैरह हम पोस्ट करते रहते हैं, उससे इंटरेक्ट कीजिए, यू नो उस पर कॉमेंट लाइक शेयर कीजिए, हमें पता चलना चाहिए कि आप देख रहे हो. जी ठीक है. और मैसेज वैसेज तो आप बिंदास कभी भी कर सकते हो. 3311 1063 इज द नंबर. सेंडिंग इब्ने बतूता इन द वॉइस ऑफ मीका सिंह एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी इश्किया ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास मेरी जान.

वीर जारा से व्हाट अ ब्यूटीफुल कवाली दैट वाज. एंड जो मोमेंट होता है ना मूवी में जब ये वाला सॉन्ग आता है एंड थ्रू आउट दैट सॉन्ग दे आर लाइक इन द ऑन द वे कि वो एक दूसरे से मिलने वाले वीर और जारा. ओ माय गॉड गूज बम्स. अभी मेरा वीकेंड का प्लान सेट हो गया. आई एम गोना वॉच वीर जारा वंस अगेन. यार क्रेजी मूवी थी. Again, a suggestion, a recommendation. If you haven't, you should. Tanisha ke saath hai, aap Radio Olive 106.3 FM par Bindaas Mornings chal rahe hain. Yahan par 9:50, almost 1:51 ho chuka hai clock mein aur mere jaane ka waqt ho gaya. Aap se milungi kal subah 6 baje. Tuesday ko celebrate karenge. I hope you guys have an amazing day. See if things do not go your way aur kisi ne kuch chota sa bol diya to usko leke ponder nahi karna hai. Theek hai, uske upar lekar baith ke sochna nahi hai. होता रहता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. सेनोरिटा एंड लेट्स टेक इट वन डे एट अ टाइम. है ना आज का फोकस करते हैं कि आज पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे. कल का कल देखा जाएगा. ये वाला फंडा अपना के रखना है और मस्त रहो बिंदास रहो रेडियो ऑलिव को सुनते रहो. जब भी मन करे हमें मैसेज कर सकते हो 3311106 पर. और अपना ख्याल रखो क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है मेरी जान. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

इश्क का रोग तो नहीं लगा है, लेकिन आलस का रोग जो है हम सबको जरूर लग चुका है, एंड इस रोग से बचने का जो है कोई तरीका नहीं है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, काफ़ी सारी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली करते हैं और वो है लेजीनेस दिखाना, यानी आलस दिखाना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करते हुए हमें आलस आ जाती है, हम लेज़ी जो है वो फील करने लग जाते हैं, एंड बस उसी लेजीनेस को दूर भगाने के लिए आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त शो लेकर। अमेजिंग वाले गाने आपको सुनाऊंगी, फन जो है आपको न्यूज बताऊंगी, बॉलीवुड की अपडेट्स देने वाली हूं मैं आपको, मूवी रिकमेंड करूंगी, फैशन की सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, साथ में आज जो है लेजी डे है, यानी वर्ल्ड लेजी डे जो है उसके चलते आपसे लेजीनेस के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन फुल एक्टिव होके। सबसे पहले तो देखो कॉकटेल 2 का जो गाना है उससे हम अपने शो की शुरुआत करने वाले एक बार फिर से, तो ये गाना जो है ये इंजॉय करके वापस आओ। उसके बाद जरा मौसम का क्या मामला है उस पर बातचीत करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस वॉल्यूम बढ़ा के स्टे ट्यून रहना है 106.3 रेडियो ऑल पर आपकी इस कशिश के साथ। सो स्टे ट्यून रहिए एंड आपकी कशिश के साथ, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रही 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
5: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली.
6: हे, दिस इज इलियाना डिक्रूज.
7: दिस इज मी ऋतिक रोशन.
8: हाय, आई एम आलिया भट्ट.
9: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.

0: यहाँ पे पी को हटा के कोई भी लड़की अपना नाम जो है वो ऑल्टर कर सकती है, वो डाल सकती है, सारे लिरिक्स जो है वो मैच कर जाएंगे। लिखने वाले ने इतना खूबसूरत लिखा है कि एक जो नॉर्मल लड़की होती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब सच में अगर आप पीकू को हटा के अपना नाम, जैसे अगर मैं कशिश लिख दूं तो मैच कर जाएगा। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जो है लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की एटलीस्ट देखो मैं कोशिश तो कर रही हूं, बाकी आप भी कोशिश कर सकते हैं 3311063 पर जो है मुझे मैसेज करके, ताकि मेरा दिन भी जो है थोड़ा और एक्स्ट्रा अच्छा हो जाए। अब देखिए, क्योंकि मूड तो बहुत खराब चल रहा है, मूड क्यों खराब चल रहा है, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है। अब अगर मौसम जो है वो इतना ह्यूमिड होगा तो चिड़चिड़ तो देखो थोड़ी सी हो ही जाती है, सो बस उस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए आपके प्यार भरे मैसेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो, मुझे कुछ प्यारा सा भेज दो यार, गुड मॉर्निंग भी भेज दोगे तो भी उसे प्यारा मैसेज सोच के जो है पढ़ लूंगी मैं, खुश हो जाऊंगी। फिलहाल बात कर लेते हैं मौसम के मामले की, तो मामला जो है वो थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, क्योंकि सनी रहने वाला है आज फिर से मौसम एंड 41 डिग्री सेल्सियस दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा एंड लोएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी लोएस्ट टेम्परेचर भी काफ़ी जगहों के हाईएस्ट टेम्परेचर से एकदम मैचिंग रहेगा। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, सो अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 43 डिग्री आपको फील होने वाला है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होगी एंड हवा जो है वो 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने वाली, यानी 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा बढ़िया डिसीजन होने वाला है लाइफ में, कोई डिसीजन लो या ना लो ये डिसीजन ज़रूर ले लेना कि हर रोज़ निकलना है घर से बाहर या ऑफिस से बाहर, 5 मिनट के लिए भी निकलना है तो सनस्क्रीन लगा के निकलना है। फिलहाल इस हीट को बीट करने के लिए म्यूजिकल बीट्स का सहारा ले लेते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपको और ज्यादा कूल फील कराने के लिए, सो वॉल्यूम बढ़ाइए, ये कूल सॉन्ग ऑफ द आर इंजॉय कीजिए। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में, उसके बाद बात करूंगी कि आप अपने सेंसेस को, अपनी बॉडी को किस तरीके से बुद्धू बना सकते हैं, किस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: इतने प्यार से आजा रे करके पुकारोगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। लगान मूवी से मितवा गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मास्टर। और जब ये मितवा लिखा हुआ आ रहा था ना प्लेलिस्ट में, मुझे एकदम मेरे मन में ना गाना चलने लग गया था मितवा, और मुझे ऐसा लगा था कि मस्त मैं इमेजिन करूँगी शाहरुख खान भाग के आ रहा है, एंड अचानक से आमिर खान का चेहरा जैसे ही गाना प्ले होना शुरू हुआ मेरी आंखों के सामने आ गया कि अरे यार कई बार ऐसा होता है ना कि आप यूट्यूब पे या कहीं भी कोई गाना ऐसे सर्च करते हो एंड उसको लगा लेते हो एंड आपको लगता है कि ओह ये वाला गाना है, एंड फिर कोई और गाना आ जाता है। होता है, होता है, कई बार होता है मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। फिलहाल एक चीज है जो मैं बिल्कुल परफेक्ट पढ़ पा रही हूँ और वो है आप सबके मैसेजेस। सो टेम्परेचर जो है, जैसे मैं इसीलिए स्पेसिफाई करके कहती हूँ कि दोहा में इस वक्त ये टेम्परेचर हो रहा है, बिकॉज काफी अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हर, मुझे ऐसा लगता है 5 किलोमीटर बाद गर्मी बढ़ जाती है और कहीं पर कम हो जाती है। सो मुझे जो है डोमिनिक जी ने जो है एक फोटो भेजी है टेम्परेचर की, उनके यहाँ पर अलग थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है, एंड उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग कशिश जी, जियो बिंदास, जियो बिंदास डोमिनिक जी। उसके बाद संधू जी ने लिखा है गुड वाली मॉर्निंग हरप्रीत संधू फ्रॉम दुकान, जियो बिंदास, थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। एंड उसके बाद यूसुफ खान जी ने मुझे गुड मॉर्निंग लिखा है, हैप्पी मंडे लिखा है, एंड उसके बाद उन्होंने फिर नोटिस कर लिया है कि हमने अपनी शो की शुरुआत जो है वो कॉकटेल 2 के गाने से की थी। बिल्कुल, अब देखिए यार कि मैंने जो है ऐसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आकर आपको कुछ यू नो आपकी बॉडी के हैक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। सो ये वाली चीज़ें मैं, मुझे पता जो है एक हफ्ते पहले ही चल गई थी, लेकिन मैंने पहले ट्राई किया एंड फिर मैं आपको बता रही हूँ। सो आपको कभी भी जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो एंड आपको ऐसा लगे कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई है लेकिन अब उठना पड़ रहा है, सो अपने राइट हैंड से नहीं अपने लेफ्ट हैंड से जो है आपको ब्रश करना है। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, अचानक से कुछ अलग हो रहा है, तो और फिर उसकी नींद खुल जाएगी। सो ये जो है जो लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें राइट हैंड से करना है, जो राइट हैंड यूज़ करते हैं उन्हें लेफ्ट हैंड से करना है, यानी अपने लेस डोमिनेंट हैंड से जो है आपको ब्रश करना है, इससे आपकी नींद ज़्यादा खुल जाएगी। एंड अगर एनजाइटी की बात हम करें, अगर आपको बहुत एंशियस फील हो रहा है तो बस आपको अपने पाम पर जो है एक आइस क्यूब रखनी है एंड उसे ज़ोर से प्रेस करना है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी स्ट्रेस बस्टर में बताया था। सो आप अगर ये करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं कि आप उसे काम होना है। एंड अगर आपको माइग्रेन वाला पेन होता है सो आप एक स्पून को जो है फ्रीजर में रख सकते हैं, एंड उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको अपने नेक के पीछे आप रख सकते हैं। ये कोई मेडिकेटेड जो है इलाज नहीं है, बट हाँ इससे हमारी नर्व्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं एंड कहीं ना कहीं पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सो ये कुछ हैक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए वर्क किए या नहीं किए आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। और अगर ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, आपको पता चल रहे हैं, तो मुझे आके बताओ यार, मुझे बहुत खुशी होगी। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: कम ऑन बेबी, ओह सुगर, नाउ हियर मी।

क्यों बनाओ मुझे ऋतिक रोशन बनने के लिए, वरुण धवन बनने के लिए, इतनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए जो है आप हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रोटीन ले लिया, आपने केराटिन ले लिया, आप जिम की फीस भी भर रहे हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और सस्ता काम करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जहां पर लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूं मैं आपकी। अब देखिए यार, लाइफ मस्त ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब बॉडी इन शेप आ जाएगी, लेकिन मसल्स जो है वो ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं बताऊं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपना हाइड्रेशन पूरा नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो। अब देखिए मसल्स जो है वो बिना प्रॉपर हाइड्रेशन के ग्रो कर ही नहीं सकते। 2.5 लीटर पानी जो है सिर्फ मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको एक हाई लीन गेन करना है, बॉडी बनानी है, सो उसके लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, अगर आप बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब मैं बहुत पसीना जो है वो बहा रहे हैं, तो एक बार जो है पानी भी पी कर देखिएगा। बीच बीच में सिर्फ अपने अपनी लव्ड वन को सिर्फ पानी पिया या नहीं ये याद दिलाने से कुछ नहीं होगा, खुद भी पीना पड़ेगा, तभी मस्त लीन बॉडी जो है वो बनकर आएगी। सो इस फ्रेश अपडेट के साथ, इस एक टिप के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ एंड ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आपको सुनाना चाहती हूँ एंड कॉकटेल 2 मूवी से एक और गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, लेकिन ये वाला ऐसा है कि इसे सुनते सुनते आप वर्कआउट भी कर सकते हो। सो एंजॉय करो, वॉल्यूम बढ़ा के, मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:11 दैट इज 11:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: सत श्री अकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।

0: आपका दिल चुरा के जो गोरिया चली गई थी ना, वो यहाँ पर है आपसे बातचीत करने के लिए आ चुकी है लाइफ मस्त है शो लेकर। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश जो है वो मैं कर रही हूँ। अब देखिए यार, आज मैंने आपको आते ही बता दिया था कि आज है आपका और मेरा फेवरेट दिन। फेवरेट दिन मतलब एक दिन जो हमें डेडिकेट किया गया है, एंड दैट इज लेजी डे। आज वर्ल्ड लेजी डे है, एंड आज सेलिब्रेट किया जाता है आलस को। मतलब आलस को सेलिब्रेट ऐसे किया जाता है कि ये ऐसी चीज है कि जो हम सब में होती है, पर इसे हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, इसे नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं जो है अपनी बॉटल जो है वो उसका पानी पीती ही नहीं हूँ कि खाली हो जाएगा तो फिर भरना पड़ेगा। मैं इतनी लेजी हूँ कि मेरा फेवरेट जो फ्लावर है वो डेजी नहीं है, वो लेजी है। मैं इतनी लेजी हूँ कि मेरा फेवरेट गाना पता है कौन सा है? लेजी किया रे। हाँ, इतनी लेजी हूँ मैं कि मुझे इतनी जहमत भी नहीं हुई कि मैं अच्छे जोक लिख लूँ, तो जो मेरे मन में पहले आया मैंने वो आपको सुना दिया। अब देखिए यार, आज आपका टास्क जो है वो ये है, आपको थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए ये करनी पड़ेगी लेजीनेस को साइड में रख के, कि आप मुझे ये बताएं कि आप कितने आलसी हैं। आलसता की हद पे जो है हम बात करने वाले कि यार कशिश देखो, मैं तो इतना लेजी हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया कि जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको मुझे बतानी कि कितने लेजी हो आप, या आपका कोई फ्रेंड, या आपका कोई दोस्त, या मम्मियाँ तो अक्सर अपने बच्चों की लेजीनेस की शिकायत करती रहती हैं, सो आप अपने बच्चों की शिकायत मुझसे कर सकते हैं कि कितने आलसी हैं वो, बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके, 3311063 पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बताइए मुझे कि यार ऐसे कितने आलसी हैं आप, आज जो है दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं आज का। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो इस गाने को एंजॉय कीजिए और फिर बताइए कि आखिर क्या गोलमाल है लेजीनेस का आपके जीवन में।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: सर क्या पर ये बात है,
0: कार्यक्रम गोलमाल, गोलमाल का टाइटल ट्रैक है ये। जल्दी से मैसेज करो और बता दो मुझे, मैं हूँ आपकी कशिश, जियो बिंदास।

0: आए हाय आए हाय हाय, मतलब पहले ऐसा होता था कि लिखने वाले जो है वो लिरिक्स की जगह लिखते थे इमोशन, मतलब गानों में जो है वो इमोशन ज्यादा होता था, लिरिक्स कम होते थे और मजे ज्यादा होते थे। देखो वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो एटलीस्ट कोशिश तो मैं कर रही हूँ। अब मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आज वर्ल्ड लेजी डे है, सो आप कितने लेजी हो, आपकी लेजीनेस की हद मुझे बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया मुझे, लेकिन एक ऑडियो नोट आया है मेरे पास जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि असली लेजी कौन है। सो सबसे पहले तो कुंवर जी का जो ऑडियो नोट है वो मैं आपको सुना देती हूँ।
1: हेलो, मैं इतना लेजी हूँ कि आपको वॉइस नोट भेजने के लिए भी मोबाइल में अपने वाइफ से खुलवाया हूँ, वो पकड़ी हुई है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो मैं वॉइस नोट भेज रहा हूँ।
0: देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुंवर जी आप जिस हिसाब से अपनी आलस दिखा रहे हैं, आपको अपनी पत्नी जी से काफ़ी जो है डांट पड़ती होगी। आप वही है ना जो टॉवल अक्सर जो है वो बेड पे छोड़ देते हैं, या वाइपर जो है वो नहीं लगाते हैं बाथरूम में लेजीनेस के चक्कर में, या लेजीनेस के चक्कर में कई बार ये नहीं कहते हैं कि खाने में नमक जो है वो थोड़ा कम या ज़्यादा है, वरना नमक लेने के लिए खुद उठना पड़ेगा, है ना, है ना, है ना, एक एक्स्ट्रा रोटी आप खुद जाके नहीं लेते होंगे। बताइए, अगर मैं आपको गलत जज कर रही हूँ तो ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, पर मुझे आलसता की हद तो ऐसी ही लग रही है, बिकॉज मैं भी आप ही के जैसी हूँ। मैं मम्मी से जो है कहती थी कि मम्मी मेरा पेट भर गया, मुझे और भूख नहीं लगी है, क्योंकि अगर मैंने बोला कि मम्मी एक रोटी और चाहिए तो मम्मी बोलेगी कि हाँ जाओ किचन से लेकर आओ, मेरे लिए भी लेकर आना। ये तो गलत हो जाएगा ना यार, मैं तो इतनी आलसी तो नहीं हो सकती, भूखे रह लेंगे लेकिन आलस नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल लेजीनेस से निकलना इम्पॉसिबल हो रखा है, जैसे प्यार इम्पॉसिबल है। सो प्यार इम्पॉसिबल वाला गाना प्यार इम्पॉसिबल मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ इंजॉय करो। और आप कितने लेजी हो ये बताने का भी आपके पास एक और मौका है, थोड़ी सी देर के लिए लेजीनेस साइट में रख के मैसेज कर दो मुझे 3311060 पर। एंड कुंवर जी थैंक यू सो मच ऑडियो नोट भेजने के लिए, एंड उनकी वाइफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए, क्योंकि आई नो थोड़ा मुश्किल होता है किसी लेजी इंसान के साथ जो है वो अपनी लाइफ बिताना। फिलहाल प्यार इम्पॉसिबल गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इंजॉय कीजिए, और मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ कहते रहिए जी ओ बिंदास।

एमटीवी कोक स्टूडियो का मदारी गाना उषा दुदलानी की आवाज में आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो कोशिश मैं कर रही हूँ। अब देखिए यार, लेजीनेस की हम बातचीत कर रहे थे कि कितने लेजी आप हैं, कितनी लेजी मैं हूँ और कौन इस लेजीनेस की कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। कुंवर जी ने जो है पॉइंट्स जो है वो जीत लिए हैं ये बताकर कि वो इतने आलसी हैं कि उन्होंने हमें ऑडियो नोट भेजने के लिए अपना फ़ोन भी हाथ में नहीं पकड़ा है। अपनी वाइफ से जो है बोला है कि लो फ़ोन पकड़ो एंड ऑडियो मेरी रिकॉर्ड करके सेंड करो। वाओ मैं देखिए इतनी आलसी थी बचपन में कि मैंने एक बार अपने हाथ जो है वो टूटने का नाटक किया था और सबको ये बोला था कि यार मेरा हाथ जो है वो टूटा हुआ है, मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक इंसान दिया था जो मेरे लिए, मैं बोलती जा रही थी एंड वो लिखते जा रहे थे बिकॉज मेरे हाथ दुखते थे। एंड मैंने कितनी बार किया स्पेशली हिंदी के एग्जाम में, क्योंकि मुझे लिखने में हाथ बहुत दुखता था, स्पेशली एसेज जब लिखने होते थे और लॉन्ग आंसर लिखने होते थे तो मैं जो है छोड़ देती थी। मैं 7 मार्क्स 10 मार्क्स के आंसर जो है वो छोड़ देती थी, नहीं लिखती थी क्योंकि इतना कौन मेहनत करेगा पासिंग मार्क्स तो आ रहे हैं ना, देखो पता तो चल ही गया है। वैसे ये वाली बात जो है वो मोहम्मद यूसुफ खान जी जो है वो तो नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कशिश आप नहीं है लेजी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मतलब आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी हार्ड वर्किंग है। यूसुफ जी बस यही बात अगर मेरी मम्मी को समझ आ जाती तो क्या ही बात हो जाती फिलहाल देखिए आप लोग भी अपनी लेजीनेस के किस्से जो है वो अभी भी मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल जो है एक अमेजिंग गाना इश्क कमीना 2.0 आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को जो है आप इंजॉय कीजिए, बेबी डू डाई डू का ये गाना है। एंड उसके बाद जो है हम जरा फैशन पे बातचीत करेंगे कि यार इस वक्त फैशन में क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ ट्रेंडी है। तो ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर यानी एकदम नया नवेला गाना फ्रेश फ्रेश सा आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे। वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशा।

गाने का नाम नजर बट्टू। एंड आपकी लाइफ में भी नजर बट्टू जो है वो ऐसी बना रही है आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, नहीं लगेगी मेरे होते हुए, बिल्कुल नहीं लगेगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हम। अब देखिए यार, चॉकलेट तो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कोई जो है डार्क चॉकलेट खाता है, कोई वाइट चॉकलेट खाता है, कोई मिल्क चॉकलेट खाता है, कोई कुनाफा चॉकलेट खाता है, अलग अलग टाइप की चॉकलेट जो है हम सब खाते रहते हैं। एंड चॉकलेट का ये क्रेज देखने के बाद स्किन केयर में भी चॉकलेट डाल दी गई, मेकअप में चॉकलेट जो है वो डाल दी गई, हर चीज को यू नो चॉकलेट से मिलाने जुलाने की जो है कोशिश कर ली गई। लेकिन अब चॉकलेट कलर जो है, यानी जो ब्राउन कलर होता है, वो इन ट्रेंड तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में अब बैक चार्म्स जो है वो चॉकलेट शेप के एंड चॉकलेट शेड के आने लग गए हैं, एंड दैट इज न्यू वायरल ट्रेंड। मतलब अगर आप अब किसी के बैग में चलते फिरते एक चॉकलेट बार जो है वो लटकते हुए देखो, तो ये मत समझना कि अरे यार ये चॉकलेट ऐसे क्यों लटक रही है बैग से, इट्स अ चार्म। ओके, चॉकलेट बार जो है उस शेप के आजकल यू नो बैग के चार्म्स आ रहे हैं जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। एंड बैजेस भी अगर मैं बात करूँ, ब्रोच, बैच, बैग टैग, ये सब जो है चॉकलेट शेप का, चॉकलेट बार शेप का जो है आ रहा है, एंड इट इज़ गेटिंग वायरल। सो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप उसे जो है फ्लॉन्ट कर सकते हैं, नहीं है तो DIY भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मुझे ही देखने को मिल गए, तो अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिलहाल टॉक्सिक मूवी से एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय करो। आने के बाद जरा थोड़ी और बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukhwakif Alkhor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11 दैट इज 12:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: हाय देयर फ्रेंड्स दिस इज डीजे सुकेतु यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो

0: इस रोमांचिक गाने के बाद जो है बात कर लेते हैं थोड़ी सी एंजाइटी को कम करने की। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त मैं बना रही हूँ। अब देखो यार, इस बारे में तो हम बहुत बार, मतलब सच में बहुत ज्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई चैट पे प्लेन ओ और के लिखता है, ओके लिखता है, तो एंशियसनेस जो है वो शुरू हो जाती है, थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये इंसान इतनी रूडली बात क्यों कर रहा है, सिर्फ ओके कौन लिखता है। सो इसीलिए ओके लिखना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप ओके टाइप करते हो तो आपकी एंजाइटी तो दिखती है, लेकिन अगर आप ओकी जो है आजकल टाइप करेंगे तो आपकी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसी रिसर्च कहती है। यस, एंड यू नो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, मेरा जो फ़ोन है उसने मुझे बताया है कि ओकी लिखने वाले लोग जो है वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों के कम एंशियस होते हैं। सो आप भी जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए 3311063 पर, मुझे मैसेज कर दीजिए ओकी, ओके आई ई, हाँ ओके आई ई डॉट डॉट डॉट ओकी लिख के भेज दीजिए मुझे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे से बात करने के बाद आपकी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो गई है, आप थोड़े से काम हैं, कंपोज हैं। तो जल्दी से जो है फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप कीजिए 3311063 पर ओकी। एंड ऐसे अगर कोई और शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप यूज़ करते हैं आजकल तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

AR रहमान जी का एक और मास्टरपीस, इतना सोलफुल गाना सुन लिया है कि मेरी सोल तक चीख चीख कर रही है कि मैं खुश हूँ, आज का शोश में खुश हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, हम सबको मिलकर जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी होती हैं जिससे हमारी सोसाइटी अच्छी हो या जिससे बाकी किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो देखिए कतर में भी वैसे तो देखिए ट्रैफिक रूल्स का सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पालन करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो कतर ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक जो है एक्सप्रेस वे पर पीछे से कंटिन्यूसली हाई बीम फ्लैश करना जो है वो एक इलीगल ट्रैफिक वॉयलेशन है। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 70 के अंदर आपको जो है पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी एंड 200 कतरी रियाल का जो है फाइन आपको देना पड़ सकता है। सो देख लो यार, मतलब ज़्यादा तेज़ अगर आप फ्लैशलाइट किसी पर जो है डालते हो बार बार एक्सप्रेस वे पे, सो ये देखो एक तो ये इंसानियत से ही अच्छी बात नहीं होती, इरिटेटिंग हो जाती है एंड ये आपकी सेफ्टी के लिए भी जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर है। सो प्लीज़ जैसा भी मिनिस्ट्री कहती है वैसा आपको करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहना है, बाकी गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलानी है जो स्पीड लिमिट कहा गया है उसमें। फिलहाल देखिए एक गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, गाने का नाम है आई एम इन लव। सो इस गाने को जो है एंजॉय कीजिए एंड जरा खुद से पूछिए, आई एम इन लव, एम आई इन लव? मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रही और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

तेरे बिन एक सजनी गाना जो है आपने एंजॉय किया, यानी एक ट्रैक में दो अमेजिंग गाने। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूं आपकी कशिश एंड आज मेरे साथ यू नो फिर से आप एंजॉय कर रहे थे शो लाइफ मस्त है, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। एंड जाते जाते अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि मैं आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलानी है, खाना खाते रहना है, पानी पीते रहना है, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, सनस्क्रीन लगाते रहना है एंड मुझे जो है याद करते रहना है। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर जो है आप फॉलो बटन दबाइए, आपको सारे आरजेस जो है उन्हें देखने का मौका मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग कंटेंट, फन कंटेंट जो है वो हम पोस्ट करते रहते हैं और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर रेडियो ऑलिव को जो है फॉलो कर लो और बाकी स्टे ट्यून्ड, तो आपको यहाँ पर रहना ही है और हमारे साथ कहते रहना है जियो बिंदास। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, इंजॉय करते रहो और मुझे जो है याद करते रहना।

0: 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

नालों वध सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदलां नूं ए मौसम कोई नवा आया मैं पहली वारी वेख्या आसमां तो नशा आया।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Mornings and nights.

0: रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: से पांच विद आरजे सुधीर रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी को किक स्टार्ट करने वाले हैं। गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो यही बोलते हुए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
4: हाय, आई एम राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है हमारे हाथ में लगी है। गुड़गांव में एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से 20,000 रुपए लेती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उसे होम कुक्ड खाना बना के देती है, उसका फेवरेट खाना बना के देती है। तो इस एक चीज ने जो है सोशल मीडिया में एक छोटा सा डिबेट भी स्टार्ट कर दिया है कि भाई एक्चुअली एक इंसान के टाइम और एफर्ट्स को और उनके स्किल्स को वैल्यू करना है तो दिस इज अ गुड थिंग। तो कुछ लोग कहते हैं क्या सही में ऐसा करना चाहिए, मतलब एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये काफी बढ़िया तरीका है क्योंकि ये पैसे घर में ही रहते हैं, जो भी पैसे ये अपने वाइफ को दे रहे हैं घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, तो बाहर जाके जो खाने के लिए खर्च होते हैं वो यहीं पे रहेंगे। तो इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो। बट एनी वे, आपको क्या लगता है इस बारे में जरा बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

मुझे लगता है इंसानों को अगर कुछ एक चीज ऐसी मिली है जो बहुत ही खूबसूरत है और जो बहुत ही बढ़िया है, वो है दोस्ती। दोस्ती कर पाना, दोस्ती निभा पाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सही में बहुत फुलफिलमेंट देता है, हमें सेटिस्फैक्शन देता है। मगर जब भी कोई दिक्कत आती है हमें और दोस्त किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो जब हम देखते हैं तो हम अपने चॉइसेस को रीथिंक भी करते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई मैंने एक वीडियो देखा जहां पे एक बंदा बैठा है, सही में उसका पुर्जा हिल चुका है, उसके चेहरे पे बैंडेज लगा हुआ है, उसका हाथ टूटा हुआ है, उस पर उसने स्लिंग बैंडेज बांधा हुआ है, हिला हुआ बंदा, इधर उधर से टूटा हुआ बंदा। उसका दोस्त उसके सामने खड़ा होकर स्पीकर में गाना चला रहा है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ना पाया। और खास बात यह है कि वो दोस्त जो टूटा हुआ है पूरा पुर्जा जिसका हिला हुआ है, वो भी इस गाने के साथ लिपसिंग कर रहा है। तो मतलब भाई दोस्ती में अपने प्यार को, अपने कंसर्न को, अपने केयर को जताने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, वियर्ड होते हैं, मगर अपने होते हैं। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. देखिए, हम सब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं. हम सब, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना नहीं देखता. मैं बहुत कम ही देखता हूँ सीरीज और मूवीज सब. अगर पसंद आता है तो ही देखता हूँ. और दूसरी बात यह है कि मुझे पुरानी चीज़ें बार बार रिविजिट करना पसंद है. मगर वो चीज़ हटा के रखिए, मुद्दे पर आते हैं. सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कुछ कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे मतलब दिल में बस जाते हैं, या फिर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं हमारे सोच का. तो एक सीरीज का एक स्टेटमेंट, एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं वर्बटिम वो डायलॉग तो याद नहीं है मुझे, मगर बेसिकली उस डायलॉग का आइडिया क्या था वो मैं बता देता हूँ. तो एक सीरीज में राधिका आप्ते बोलती है कि हम उन्हीं लोगों को चोट पहुँचा सकते हैं या फिर दर्द दे सकते हैं जिनके साथ हम प्यार करते हैं. जिनको हम प्यार नहीं करते हम उनको दर्द नहीं दे सकते. तो पहले जब मैंने सुना तो मैं सोचा था कि क्या बकवास बात की गई है. फिर मैंने सोचा उसके बारे में, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, जिनके साथ हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम करीब हैं, या फिर जिनके साथ एक करीबी रिश्ता है हमारा, उन्हीं को हम दुख दे सकते हैं. बाकी इंसान को कैसे दुख दे सकते हैं? ये हमारा दिया हुआ दुख सबसे बड़ा दुख तभी तो बनेगा जब एक अपनापन होगा. और वो चीज़ घर कर गई. उसके बाद से अपनों के साथ का जो व्यवहार है उसमें थोड़ा और ध्यान देना हमने जो है शुरू किया. मगर ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि यार आपके दिल में रह गया एक किसी भी सीरीज का, किसी भी मूवी का, तो बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके. और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: चलिए भाई आज बात करते हैं एक हिस्टोरिक रोड के बारे में, एक ऐतिहासिक सड़क के बारे में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। 1833 से लेके 1860 तक ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे, मगर 3rd century BCE में मौर्यन एम्पायर के टाइम पे इसको शायद किसी और नाम से पुकारते थे। एक नाम था उत्तरपाथा, दूसरा था सड़क आजम और एक था बादशाही सड़क। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है एक बहुत ही आइकॉनिक ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट मेजर रोड है एशिया का। 3655 किलोमीटर जो है ये स्ट्रेच करता है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन चार कंट्रीज से होके हुए गुजरता है। इसके ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले जो है इस रूट को यूज करना शुरू किया था लोगों ने। उसके बाद फिर 16th सेंचुरी में इसको रिवाइव किया एम्परर शेरशाह सूरी ने। और अगर हम अभी की बात करें, अभी ग्रैंड ट्रंक रोड की हालत क्या है, क्या चल रहा है वहां पे, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि यहाँ पे गाने भी इंतजार कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात कर रहे थे ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, कितना हिस्टोरिक रोड है, उसके हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की, डिफरेंट डिफरेंट एराज से वो गुजरा है उसके बारे में बात की। अभी की अगर हम बात करें तो हम इंडिया से उसका जरा ताल्लुक जरा देखते हैं। इंडिया में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है उसका मेजर हिस्सा जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, यानी कि दिल्ली से जो नेशनल हाईवे 19 है जो जाता है वो इसी रोड के हुए होते हुए जाता है। उसके साथ साथ दी फेमस अटारी वाघा बॉर्डर जो है ये रोड उस रूट से भी होते हुए जाता है और उसको नेशनल हाईवे 44 का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लाहौर से लेकर पेशावर तक जो है ये रोड जाता है जिसको NH5 नेशनल हाईवे 5 का दर्जा दिया गया है और ये पाकिस्तान का सबसे बिजिएस्ट और इकोनॉमिकली वाइटल हाईवे है। और अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ये रोड जो है बांग्लादेश से शुरू होती है, तेकनाफ करके जगह से शुरू होती है, वहाँ से चिटागोंग और ढाका होते हुए इंडिया में आती है। तो बांग्लादेश में नेशनल हाईवे 1N1 और नेशनल हाईवे 2N2 का दर्जा इसे दिया गया है। अफगानिस्तान यानी कि इस रोड का वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर जो है जलालाबाद से काबुल तक होते हुए जाता है और अफगानिस्तान का एक मेजर नेशनल हाईवे है ये जो खैबर पास से होते हुए गुजरता है। तो आप कहीं से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर आप इस सड़क से गुजरे हो तो याद रखना कि आप एक ऐतिहासिक सड़क से गुजरे हो। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा शेर जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, मुझे इंस्टाग्राम में मेरे एक फ्रेंड ने भेजा था। लिखा है कि कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। और ये शेर जो है रिश्तों के उस अजीब कैद की बात करता है जहां करीब होने के बावजूद लोग जो हैं दूर रह जाते हैं और अपने ही खुद सख्ता हदों में आजाद होते हुए भी कैद रहते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी अम्यूजिंग सा किस्सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो इंडिया में कर्नाटका में एक फार्मर ने जब अपना लोन चुकाया, ठीक है, 50,000 रुपीज का उन्होंने लोन जब चुकाया तो 9.34 का एक बैलेंस रिपोर्ट आया और बोला बैंक वालों ने कि आपको ये 9.34 रुपीज जो है भरने पड़ेंगे। और बंदे ने क्या किया, बोला 10 रुपए मैं दे रहा हूँ, अब आप मुझे एग्जैक्ट चेंज 66 पैसे जो है दीजिए वरना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा करके। देखिए बैंक ने जब छोटा सा चिंदी बना दिखाया तो फार्मर ने बोला मैं भी दिखाता हूँ करके। बट मैं कम्प्लीटली यहाँ पे एक स्टैंड जो है ले नहीं सकता कि बैंक ने जो है चिंदीपना दिखाया, छोटा अमाउंट है ये करके। अब देखिए वो एक कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट आया था तो ये हुआ था, बैंक कुड हैव यू नो वेव्ड इट ऑफ, बट हाँ क्या करते हैं, बैंक की अपनी चलती है, अगर बैंक ने अपनी चलाई तो हमारे फार्मर भाई ने भी अपनी चलाई है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: हाय मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो यही है कि अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट नहीं किया तो जानिए ऐसा क्या किया, क्यों किया। सीधा जाइए, इंस्टाग्राम खोलिए, radioolive.qa सर्च कीजिए, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो सेव भी कर लीजिए। उसके साथ साथ जब भी आप हमें सुन रहे हो कहीं भी जाते वक्त, तो आप सीधा स्टोरी बना के डाल दीजिए, हमें टैग करिए, हम रीशेयर करेंगे। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कई सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट भी रखते हैं, तो गिफ्ट जीतने का मौका जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी है। तो यही बोलूंगा कि भाई इंतजार किस बात का है, अभी से आप जो है हमारे पेज के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दीजिए, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कूल रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

भाई कभी कभी सोशल मीडिया में जो खबर आती है वो एकदम से देख के लगता है कि भाई क्या हो गया, मगर थोड़ा ध्यान से जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बस बौखाल मचाने की जो है कोशिश की गई थी। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और रिसेंटली खबर आई थी कि आईशो स्पीड जो है एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो एक चीज करते वक्त जो है एक्सीडेंट में हो गए थे, फंस गए थे और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। तो वो क्लिप जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आईशो स्वीट जो है उन्हें बलून से जो है हवा में लिफ्ट किया जाता है और एकदम से वो जो भी चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे थे, स्टंट वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उस वीडियो का, उसे देख के तो यही लग रहा था कि भाई आईशो स्पीड तो गई हो मगर ऐसा नहीं है। ये स्टंट जो है वो काफ़ी सेफ्टी प्लानिंग के साथ परफॉर्म किया गया था, एक कंट्रोल्ड सेटअप था और एक लार्ज फोम लैंडिंग एरिया भी था। अब ये जो है इस स्टंट के डेंजर को कम नहीं करता है, बट जिस तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है वो लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर सकता है। तो वो कहते हैं ना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बुबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि स्टेशन क्लॉक में 5 बजने वाले हैं। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे गानों के साथ, गुफ्तगू के साथ, बातों के साथ, खबरों के साथ, किस्सों के साथ, कहानियों के साथ, बहुत सारे वक्त के साथ। मैं आ जाऊंगा कल यहाँ पे इसी सीट पे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, वक्त बताने के लिए। तो फिलहाल यही बोलते हुए हम जरा निकलते हैं, और सिमरन का स्वागत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। और जाते जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

जियो बिंदास करने के लिए तो यहाँ पे हाजिर हुई है दोस्त मैं जी सोने किता दिखी हाल सत सिमरन कौर नाल जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। क्या आपका दिन जबरदस्त रहा आज का 3311106 पर या फिर गर्मी ने और काम ने।

0: घंटी घड़ी की सुइयां कह दी है कि आपका काम खत्म हुआ, तो
1: तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार हुआ।
0: तो चार घंटे अपनी सुप्रीम कॉल यहीं पर रहने वाली आपके साथ। आपके दिन के बारे में बताइए, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजिए मुझे 3311106 पर।

0: गाना खत्म, पैसा हजाम।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
3: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
2: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
3: कतर जनरल सिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन, करामा।
4: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान। तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: ऑल ऑफ सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

लल्ला लल्ला ये नाम याद नहीं होते। सारे नाम ले रखे तो लला लला कर लो, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है गाने में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं कहीं सोने की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल। सो जबरदस्त इवनिंग्स में मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा बतानी आपको जरूरी, क्योंकि आपको पता आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। सो कतर एयरवेज ने पब्लिक वार्निंग जो है वो दी है कि उनके नाम के जो है सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट जो है वो बन रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि वो आप लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं जो फेक अकाउंट बना रहे हैं, तो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग रहे हैं, ठीक है। सो उनका ये कहना है कि भाई हम कभी भी सोशल मीडिया के थ्रू डीएम करके आपके पासवर्ड ओटीपी या बैंक की डिटेल्स नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप ये काम कभी मत करिएगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा। देखो यार इतना कुछ हो रहा है, लोग कोई ना कोई जरिया निकाल लेते हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का और स्कैम करने का।

0: 96.3 FM Geo Bindas.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
4: साथ जबरदस्त इवनिंग। मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हो की हाल सिमरन कौर आप के साथ। देखो यार, लड़ाई झगड़ा हर किसी में चलता है। आजकल सबसे बड़ा एक ये दिखाने का तरीका है कि हम आपसे नाराज हैं और हम आपसे बात नहीं करना चाहते। लोगों के लिए आजकल ये एक सेकंड की बात है, क्योंकि सारी कॉन्वर्जेशन ऑलमोस्ट व्हाट्सएप पे ही होती है। जब आप फोन पे बात नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप होता है, तो आजकल लोग जो है व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर देते हैं। अब मैं एक वीडियो देख रही थी, मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। मान लीजिए कि मुझे पता है कि अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने किसी ना किसी को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर उनको किसी ना किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, कोई तो आप में से होगा। सो, अगर आप चाहते हैं कि जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है वो आपसे बात करे, सो ये तरीका निकाला गया। तरीका ये है कि आप अपने किसी दोस्त को बोलिए कि आपके और जिसने आपको ब्लॉक किया है उसको मिलके एक ग्रुप बना दे, और जब वो ग्रुप बन जाए तो वो ग्रुप को छोड़ दे ताकि उस ग्रुप में वो दो लोग रहे। तो इस तरीके से आप अपना मैसेज जो है ऑलरेडी टाइप करके रखिएगा ताकि वो मैसेज आप सामने वाले की तरफ जो है वो डिलीवर कर सके। अगर नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन है और आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार ये चीज़ हो सकती है, लेकिन बेइज्जती ये भी हो सकती है कि जैसे ग्रुप बनाए और बंदा छोड़ दे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि किसी ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो मुझे लगता है कि उसको वो स्पेस आपको देनी चाहिए कि भाई निकल निकल, तू निकल यहाँ से, ठीक है। ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, आपको अपना एनर्जी किसी को नहीं देनी है यार इतनी कि भाई सामने ने ब्लॉक कर दिया और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। लेकिन अगर बंदा वो स्पेशल है या बंदी वो स्पेशल है तो मेल करो यार। तू जाना ना पिया, मैं आ रही हूँ डार्लिंग।

0: Goa's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

छम छम कहीं तो हो गई है यार। हम लोगों के पास ना मुझे लगता है कि कतर में रह के बारिश हमको बिल्कुल बराबर भी ट्रीट नहीं कर रही है यार, क्योंकि हम लोगों को इतने दिन से बोला जा रहा बारिश होगी लेकिन बारिश हो रही है दोस्त, लेकिन अपने एरिया में बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं कतर के कौन से कोने में बारिश हो रही है यार। बारिश मतलब सबकी बारिश होती है, धूप जैसे सबकी धूप होती है, गर्मी जैसे सबकी गर्मी होती है, सर्दी सबकी सर्दी होती है, तो बारिश क्यों नहीं सबकी होती है यार। मैं नहीं बात कर रही।

0: टेम्परेचर बता दे दी, 39 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस है एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस लेकिन फील्स 43 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली एंड फील्स लाइक तो भाई 50 तक पहुंच जाता है, दोपहर में बैंड ही बज जाती है, मिनिमम है 35 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी है 53% एंड विंड जो है 15 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। लेकिन माई लॉर्ड ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं किया जाए अभी, मतलब सब कुछ बराबर रखा जाए यार। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब मैं अपने ही कतर में देखती हूँ, है ये बारिश हो गई है और हमको क्यों नहीं पता।
1: ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल,
0: बेटा गोले गोरे गालों पे तो टैनिंग हो गई है। खैर दोस्तों पानी जो है वो पीते रहो, गर्मी आज हमारे ऑफिस में भी हम बात कर रहे थे कि यू नो ये अगस्त जो है वो रहने वाली है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और सितंबर में जाके थोड़ा सा मौसम लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इवनिंग के टाइम पे है ना, सो बस सब लोग उसी के इंतजार में लगे हुए हैं। आप फिलहाल के लिए मेरा थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में वापस लौट रही हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी बताने के लिए बातें हैं। फिलहाल तो 6:07:55 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। आ रही हूँ जियो बिंदास, मुसाफिर कैफे का ये गाना।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसको सुन के आपको दुख होने वाला है यार, बहुत दुख हुआ है यार मुझे इसको सुन के।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात हो सकता है कि आप लोगों ने भी इस न्यूज को देखा हो। राजस्थान के एक फार्मर की, एक किसान की न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो कुछ टाइम पहले, एक साल पहले, उनको प्रॉपर्टी में से जो है वो मतलब पैसे मिले थे, मतलब प्रॉपर्टी सेल की थी उन्होंने, 5 लाख रुपए थे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपनी यू नो फैमिली को नहीं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर फैमिली का खर्चा हो जाता है। तो वो पैसे जा रहे थे कि भाई वो एक जगह जो है वो बनाने वाले हैं अपने खेत के अंदर ही, है ना। सो वो 5 लाख उसने क्या किया कि अपने खेत में जाके कहीं पे दबा दिए। ओके, अब एक साल बाद जब उसको वो जगह बनानी थी अपने यू नो खेत के अंदर, वो रूम बनाना था, तो उसके लिए उन्होंने, अब उसको भूलने की भी बीमारी थी भाई, वो भूल भी जा रहा था बंदा। तो वो अपने जहां पर उनका प्लॉट था, जो भी जहां पे वो फसला वसला उगाते थे, तो वो ढूंढ रहे वो मिल नहीं रही, लेकिन somehow उनको वो जगह मिल गई जहां पर उन्होंने 5 लाख एक साल पहले रखे थे। अब बात यह है कि जिस बैग में डाल के रखे थे वो बैग फट गया और टर्माइट्स ने वो 500 के नोट, जो पैसा वैसा था, वो सब खा लिया। यार मैं उसका वीडियो देख रही हूँ, उसका फोटो देख रही हूँ, मुझको इतना ज्यादा बुरा लग रहा है यार। बेचारा क्या क्या सोचा था, बट गलत गलत हो गया है।
2: ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा,
0: फायदा सोचा था नुकसान हो गया यार। क्या कहते हो, बाहर का चांद क्या कह रहा है, दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो मुझे बताओ दोस्त। 3311106 3 पर

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास। जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: इस बात में कोई दो राय नहीं है। शाम शानदार। शानदार चीजें हमको सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं और कभी कभी हमको पता नहीं लगता कि मिनट्स जो है वो कब घंटों में बीत जाते हैं और कब कभी कभी दिन चढ़ जाता है, कभी कभी शाम हो जाती है कि हम इतना डूम स्क्रॉल जो है वो करते हैं, लेकिन हमको कोई रोकने वाला है नहीं है। लेकिन अब एक कैट गेट कीपर है जो कि आपको रोक पाएगा। एक वायरल ब्राउजर एक्सटेंशन है जिसको क्रिएट किया है कि जापानीज डेवलपर ने। सो उसने क्या किया कि जो हम डूम स्क्रोलिंग करते हैं ना उसको रोकने के लिए, तो आपको क्या कर रहा है कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है जो कि 60 मिनट का आपको एक्टिव स्क्रोलिंग टाइम देती है। सो बीच में 5 मिनट का मैंडेटरी ब्रेक आपको जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको ये ब्रेक किस तरह से मिलेगा। अब आप अगर स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं बट ये बीच में एक बिग फैट कैट रहेगी ब्राउन कलर की जो कि आके आपकी स्क्रीन पे बैठ जाएगी, नॉट रियल बट आपकी स्क्रीन के बीच में आ जाएगी। सो आपके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं 5 मिनट ब्रेक लेने के, क्योंकि आप स्क्रीन पे 5 मिनट उस कैट को नहीं देख सकते हो। तो आपकी सेटिंग जो है वो इस तरीके से कर दी गई है। सो ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि हम डूम स्क्रोलिंग करते करते हमको पता नहीं लगता कितने घंटे कितने टाइम जो है वो हमको हो जाता है। सो एटलीस्ट आपकी आंखों को तो रेस्ट जो है वो मिलेगी। अमेजिंग सिमरन गौर आपके साथ जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर।
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas 106.3 Radio
1: Olive Gio Bindas. अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

करते करते बीच में छींक आ जाए तो मुआफी दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इतनी देर से लग रहा है ये मेरे साथ झोल कर रही है कि बेटा मैं आ रही हूँ लेकिन ये आ नहीं रही है यार। मैं कहती सड़ियों की तरह हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुहाडे नाल, और आज हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने डरा दिया था यार।

बिखरने लगे, चलो दीदी इसी बहाने नहा तो रही हो। बहुत ही गंदा जोक था यार, हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिल्म के बारे में बात करते हैं, इसको देख के हंसी नहीं, इसको देख के एक्चुअली डर लगा था। मुझे आज भी याद है जब ये फिल्म देखी थी, डर लगा था यार। सो डिनो मोरियो और बिपाशा बसु की जो आवाज थी उसको विक्रम भट्ट एंड मोना घोष ने जो था वो डब किया था। और जब इस फिल्म का पोस्टर आउट हुआ था तो जगह जगह पे लिखा हुआ था कि इफ यू वॉन्ट टू नो द सीक्रेट, ठीक है। तो फिर आगे जब ये फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद लिखा था कि सीक्रेट इज आउट, इट्स अ हिट। बिल्कुल। सो इसके साथ साथ अनिल कपूर को पहले इस रोल को ऑफर किया गया था डिनो मोरिया वाले को, पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। उनको लगता था कि भाई बॉलीवुड में ये हॉरर फिल्म जो है वो काम नहीं करती हैं, लेकिन काम कर गई। इस फिल्म के बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है वो बताने वाली हूँ। आप जहां पे हो वहां पे रहो।

0: महंगाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: अलका याग्निक की आवाज और ये भूतों वाली फिल्म। सात बज के 20 मिनट और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो फिल्म का नाम है राज फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये जो बिपाशा बासु ने रोल किया था इस ये संजना का, सो ये पहले लीजा रे को ऑफर हुआ था, ठीक है, तो समहाउ ऑफकोर्स बिपाशा के पास गया ये रोल। और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है व्हाट लाइज बीनीथ। और नदीम श्रवण की बात करें, इसका म्यूजिक जो था वो बिग हिट था और उनके करियर को इस फिल्म को जो है अलग लेवल की बूस्ट जो है वो मिली। एंड इसमें आपको पता है कि बहुत सारे डरावने सीन है और इसमें बिपाशा बसु ने बहुत बढ़िया डरने की एक्टिंग भी की है, लेकिन ये डरने की एक्टिंग एक तरीके से और आई है कि उनका रियल एक्सप्रेशन ही दिखना चाहिए। सो क्या करते थे विक्रम भट्ट और उनकी टीम जो थे वो डराते थे, प्रैंक करते थे, और जैसे ही वो प्रैंक में डर जाती थी वो रियल एक्सप्रेशन जो थे वो कैच करते थे। सो या एंड इस फिल्म की जो लोकेशन थी वो एक फॉरेस्ट के बीच में थी, एक बंगलो बना हुआ था जहां पर रात में जो थे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी, एकदम शांत माहौल हो जाता था, लाइट्स ऑन होती थी, पूरा माहौल जो था वो स्केरी हो जाता था। सो या ये फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। ये राज फिल्म ने बॉलीवुड को एक ट्रेंड दिया था टू मेक हॉरर मूवीज। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को मिस कर दिया है बताओ मुझे 3311063 पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: बड़ी हिम्मत है यार, दूसरा दिल भी दे दो तुम्हें तोड़ने का हो भाई। पहली बार मेरा दिल तोड़ोगे फिर तुम्हारे जिगर फेफड़े सब खतरे में है यार। 7:31 पचपन से इन स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके जोक्स अवार्ड सिमरन गौर आपके साथ है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी बिल्कुल जरूरी है यार। ये मैंने ना एक बहुत ही प्यारा वीडियो देखा जिसमें मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज मैं दिमाग में सोचती थी लेकिन इस लड़के ने कह दी है। क्या वाकई में ऐसे होता है कि ये जो हमारे ब्राउन पेरेंट्स हैं मुझे लगता है कि इनको लगता है कि ये सोने को लेके ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मतलब जब भी घर पे हम लोग सो रहे हैं या मतलब अपनी नींद ले रहे हैं ठीक है उसके बाद उनका ये होता है कि 6 बजे ही बोलेंगे कि 10 बज गए हैं तुम अभी तक सो रहे हो, सर पे धूप चढ़ गई है। आई एम श्योर सभी ने, जो जितनी भी ब्राउन फैमिलीज हैं उनके बच्चों ने सबने ये बात सुन रखी है कि रात दोपहर के 12 बज गए हैं ये तो उठते ही नहीं है। ये तो मतलब सोने को लेके उनका ऑब्सेशन बहुत तगड़ा है। सोने को लेके डिसाइड किया जाता है कि भाई ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो निकम्मा है, ये तो निकम्मी है। लेकिन उस वीडियो में ये बोला गया था कि यार हर इंसान का ना एक अपना बॉडी टाइप होता है, हर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत सारी लाइफ में चीज़ें जो चल रही है। लेकिन अपने पेरेंट्स ठीक है इन अ वे वो सही भी बोलते हैं, जब हमारा करियर बिल्ड होने वाला होता है तो उस टाइम पे हम लेजी ना हो जाएं, हम जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको हम सोने के लिए कम्फर्ट जोन में रहने के लिए ही ना मतलब हम इग्नोर कर दें कि हाँ पेरेंट्स हैं तो वो सब कर लेंगे। मैं समझती हूँ, लेकिन समहाउ आप में से कितने लोगों ने फील किया है कि यार जितने भी ब्राउन पेरेंट्स हैं उनको है भाई सोने से दिक्कत है, तुम सो गए ना दिन में, तुम लेट उठे ना तो दिक्कत हो जाएगी यार। 3311063 पर बताओ यार। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ, गेट रेडी।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

की आवाज में ही ऐसे गाने मुझे पसंद है। मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी मेरे एक दोस्त से कि अभी जो वो रूरल रंधावा के गाने आ रहे हैं वो सेम एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये आशा कोट से एक यू नो ये गाना है बहुत ही प्यारा लगता है यार, जो कि आपने अभी सुना। 7:52 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और ये टाइम है आपका। कि आपका नाम मैं अभी की अभी रेडियो पे बोल दूं तो आपको अभी कभी मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट करके उसी व्हाट्सएप पे आपको अपना नाम लिख के मुझे भेजना होगा। ऑलरेडी आप लोगों के मेरे को बहुत सारे नाम जो है वो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। चलिए मैं कट शॉर्ट करती हूँ। 3311063, जी हाँ 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दो, मैं आपका नाम बोलती हूँ। मोहम्मद यूसुफ जी, वाजिद शेख जी, अरमान जी, गुलाम जी, ऐश जी, आसमा जी, नूर जी, हुजाइफा जी, थैंक यू सो मच। फारा चांद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। प्रेम जी, थैंक यू सो मच। फरमान जी, थैंक यू सो मच। नारायण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दोस्त हाई क्यों लिख रहे हो, अपना नाम लिख दो ना यार। सुमोन उद्दीन जी, खिजर हयात खान जी, थैंक यू सो मच। यूनुस जी, थैंक यू सो मच। यम थापा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। यही क्या होता है दोस्त, अपना नाम लिखो ना यार। रिहान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फजर जी, थैंक यू सो मच। इब्रार जी, थैंक यू सो मच। फातिमा यूसुफ जी, थैंक यू सो मच। किसी ने ओजी लिख दिया यार, ये कोई बात होती है जी। यासिर अबासी जी, थैंक यू सो मच। आफरीन जी, थैंक यू सो मच। अरीज जी, आफरा जी, जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आलिया जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। धर्मेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हारिस जी, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र थापा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है, बताओ बताओ, आपकी स्पीड है ही नहीं है क्या। फवाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सलीम जी, थैंक यू सो मच। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड सूरज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। संदीप जी, अबीर जी, रिशा जी, और मैं अपनी गुर्दन घुमा रही हूँ यार, फिर आप लोगों के नाम आते रहेंगे यार। अगर आपने अपना नाम सुन लिया तो आप थैंक यू लिखियो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दीजिए।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

उसमें बोलते हैं ना तो डर है क्या अगर वो तुम पर, मैं डर जाती हूँ अरे भूतों वाली मूवी से। बागी में और किसी से नहीं डरती हूँ। 8:19 17 सेकंड स्टूडियो की घड़ी बज गई। सिमरन कार

0: अपनी सुना, हम यही तो करते हैं इसमें।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाली हूँ, चाहे तो अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो ताकि आप 3 से 4 बार सुन सको और ये जान सको कि ये गाना कौन सा है।

गॉड, बहुत प्यारा गाना है यार, बहुत प्यारी फिल्म है यार। बस आप मुझे बताइए गाना कौन सा है। लिखिएगा, ये लिखने की बीमारी क्यों है यार, क्यों करते हो यार ये काम। ये मेरे पास भी लिखने की बीमारी नहीं है, आप भी मत रखो क्योंकि आप मेरा शो सुनते हो। सो क्विकली वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। हे सिमरन, अपना नाम बताओ और भेज दो 3311106।

0: चलो चलो चलो फटाफट से गा दो 3311063 पर
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
0: यार ये कितना प्यारा गाना है यार, अलका याग्निक की आवाज में।

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
2: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
1: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे।
4: सिमरन के साथ
0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आपको याद है हम क्या खेल रहे हैं?
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: और एक चुटकी सॉन्ग में सुनाया था।

0: एक नंबर सिमरन कौर आपके साथ। और ये कौन सा गाना है यार, आप गा देती तो और भी बढ़िया लगता।
1: हे सिमरन रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल
0: फिर भी आपने गा दिया, आपने मेरी तरह गाया। जिस दिन मैं मतलब ऐसे बोल के गा के थोड़ा सा बता दी, ये बोल के गाने का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपने किया। बट थैंक यू सो मच, इनका नाम है शीतल, इन्होंने बाद में लिख के भेज दिया था, बहुत ही बढ़िया गाया। लेकिन मैं उन लोगों से कट्टी हूँ जो मुझे लिख के भेजते हैं, ठीक है। तो ये काम ना किया करें, ये कॉन्टेस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा वार्तालाप करने के लिए है। वो वार्तालाप मतलब मैसेजेस पे नहीं होती है यार, वॉइस नोट पे होती है। सुंदरी रेडियो वाले कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हाँ जी मैं कह जी सुनियो कि देखी हाल चाल सिमरन कौर आपके साथ। और देखो चार घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और सिमरन कौर के यहाँ से कल्टी माने का टाइम आ चुका है। पता नहीं यार जब भी मैं अभी बोलने वाली थी ना तो मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा था कि मैं ये बोल दूं अरे कल तो वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी। नहीं कल ट्यूसडे को साथ में लेके आऊंगी, वीकेंड बहुत जल्दी दो दिन के बाद लेके आ जाऊंगी, फिर टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं यार, सोचना नहीं है आपको हर चीज के बारे में, सिर्फ खुशी का इंतजार करना है। कुछ छोटी सी खुशी भी आपकी लाइफ में आने वाली हो, चाहे वो पार्सल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ऑर्डर ही क्यों ना हो, सो या फिर किसी की कॉल ही क्यों ना हो, या फिर किसी का मैसेज ही क्यों ना हो, तो बस उन चीजों में खुश रहा करो। बड़ी बड़ी खुशियां झकमार के आपके पास आएंगी, ठीक है। सो मैं भी कल झकमार के आप ही के पास आऊंगी 5 बजे। खांदे बिंदर वायश कर दे रो, चेहरे बड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. आपके ऑफिस में भी एक ऐसी मीटिंग होती है ना, जिसमें मीटिंग शुरू होने से पहले ही सबको पता होता है कि कंक्लूजन क्या होगा, फिर भी कैलेंडर इनवाइट आता है 30 मिनट, उसके बाद फिर 45 मिनट, और फिर कोई बोलता है कि लेट्स टेक दिस ऑफलाइन, और एंड में आई विल सेंड एन ईमेल विद द एक्शन पॉइंट. मतलब पूरी मीटिंग का काम एक ईमेल था. बट सरप्राइजिंगली ये जो है इट्स जस्ट नॉट एन ऑफिस जोक. माइक्रोसॉफ्ट के वर्क प्लेस रिसर्च हैज फाउंड दैट कि इनएफिशिएंट मीटिंग्स आर अमॉन्ग द बिगेस्ट रिपोर्टेड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम. एंड

सारे एम्प्लॉयज ऐसा बोलते हैं कि दे डोंट गेट इनफ अनइंटरप्टेड टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन देयर वर्क. मे बी द रियल क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीटिंग्स डिड वी अटेंड टुडे. बस मतलब मीटिंग्स पे मीटिंग्स, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, हाउ मच एक्चुअल वर्क डिड वी गेट टाइम टू डू. तो आप बताइए कि आपकी लाइफ की सबसे अननेसेसरी मीटिंग कौन सी थी और आपको लगा कि यार इसकी जगह काम कर लिया होता तो शायद ये ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता. वैसे एक मीटिंग के साथ एक चाय कॉफ़ी और यू नो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो जाती है, तो आई फील यार ये मीटिंग्स भी ज़रूरी हैं. बाय द वे आपको क्या लगता है? द नंबर इज 3311063 और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, चियो बिंदास.

कभी ऑफिस से घर आए हैं, पूरा दिन चेयर पर बैठे और घर पहुंचते ही लगा बस आज और कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। फिर खुद से सवाल पूछा कि मैंने किया क्या था आज। एक्चुअली आपने बहुत कुछ किया था, ईमेल्स, व्हाट्सएप, टीम्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, एक तब से मतलब एक के बाद एक काम और एक टास्क से दूसरा टास्क। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च ने ये फाउंड किया है कि एम्प्लॉयज कैन बी इंटरप्टेड बाय अ मीटिंग, ईमेल और चैट रफली एवरी कपल ऑफ मिनट्स ड्यूरिंग कोर वर्क आवर्स। तो कभी कभी हम वर्क से नहीं, मतलब कॉन्स्टेंट स्विचिंग से टायर्ड हो जाते हैं। दिस इज वॉट रिसर्च इज सेइंग। सो दिमाग को हर बार एक नया कॉन्टेक्स्ट में जंप करना पड़ता है। इसीलिए आज रात एक काम कीजिए, सब कुछ एक साथ सॉल्व करने की जगह एक वक्त में एक चीज कीजिए। दिस इज व्हाट आई एम अप्लाइंग ऑन माय सेल्फ, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक काम कर रही हूँ तो उसको अच्छे से कर लेती हूँ और उसके बाद दूसरे काम को करूंगी। आपको मेंटली सबसे ज्यादा क्या थकाता है? मीटिंग्स, मैसेजेस, ईमेल्स या कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहना? मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि हर चीज़ एक साथ करना। जब मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करती हूँ ना, तो चीज़ें ख़राब होने लगती। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी सारी चीज़ें बड़े आराम से करेंगे। और आज बात करेंगे क्योंकि टुडे इज़ मंडे और कल से हमारा, यानी कि संडे से ऑलरेडी हमारा वर्क वीक जो है वो स्टार्ट हो गया था। दो दिन हो चुके हैं काम करते करते और अब ऐसा लग रहा है कि बस तीन दिन और। इसी के साथ बात करेंगे आज ऑफिस वर्क और प्रेशर की। लेकिन आप कहीं जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव। दिस इज मी मुस्कान विद यू। नंबर है 3311-1063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

इमेजिन कीजिए, आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में एंटर करते हैं, लैपटॉप खुलता है और सामने कोई पावर पॉइंट नहीं, कोई स्लाइड्स नहीं, नो एनिमेशन, नो एज यू कैन सी ऑन स्लाइड नंबर 17। Amazon के अंदर मीटिंग में PowerPoint प्रेजेंटेशन की जगह नरेटिव मेमोज यूज करने का सिस्टम है। Amazon के ऑफिशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज मीटिंग के स्टार्टिंग में धीरे से मतलब साइलेंटली एक स्ट्रक्चर्ड मेमो पढ़ते हैं, ऑफन अप टू 6 पेजेस, मतलब 6 पेजेस से ज़्यादा नहीं होता, और फिर डिस्कशन होती है। सो आइडिया सिंपल, प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटर आपको बताता है कि क्या देखना है। नैरेटिव में आप पहले कुछ सोचते हैं, मे बी दैट्स अ गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। गुड कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट स्पीकिंग बेटर, मतलब ऐसा होता है कि समटाइम इट्स अबाउट गिविंग पीपल इनफ स्पेस टू थिंक। जब आप खुद पहले सोचते हैं तो आपके आइडियाज ऑलरेडी आपको पता होते हैं और उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे से उसे बता पाते हैं। सो आपको क्या पसंद है, ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन या फिर क्लियर कॉन्वर्सेशंस? बाय द वे आई एम इन टू क्लियर कॉन्वर्सेशंस। प्रेजेंटेशंस मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं टू अंडरस्टैंड। आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज एंड द नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड।

So, कल अगर जब आप ऑफिस जाओगे और अगर बीच में मन करे ना 15-20 मिनट का आधे घंटे का ब्रेक लेने का, तो वॉक पे जरूर जाइएगा। काम छोड़ के लोग कहेंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो बोल देना कि रिसर्च के कहने पर। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वॉकिंग क्रिएटिव थिंकिंग को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। एक स्टडी में वॉकिंग के टाइम पर क्रिएटिव आउटपुट एवरेज में अबाउट 60% हायर था कंपेयर्ड विद सिटिंग। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ ब्यूटीफुल आउटडोर वॉक की बात नहीं थी, इंडोर ट्रेडमिल वॉकिंग ने भी क्रिएटिविटी इम्प्रूव की है। तो अगर आपके ऑफिस में आपको ऐसा लगता है कि कोई वॉकिंग एरिया के साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट एरिया भी है, तो उसे भाई यूज़ करना स्टार्ट कर दो। लेकिन एक कैच है, वॉकिंग क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हेल्पफुल थी, नॉट नेसेसरली टास्क जहाँ एक एग्जैक्ट राइट आंसर चाहिए, राइट? सो नेक्स्ट टाइम स्टक हो, लैपटॉप को घूरते मत रहिए, थोड़ा वॉक कीजिए। मे बी आंसर स्क्रीन के सामने नहीं है, आपके यू नो अगले 500 स्टेप में आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। वैसे आपके बेस्ट आइडियाज आपको लगता है कि कहाँ पर आते हैं? ड्राइविंग करते टाइम, वॉकिंग करते टाइम, या फिर यू नो फोन चलाते चलाते कुछ देख लिया और कुछ पढ़ लिया और कुछ अलग सा यू नो आइडिया आ गया। बाय द वे, आइडिया कभी भी आ सकता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। नंबर इज सेम या 3311106 3। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपका घर कहाँ है? इजी। आपका ऑफिस? इजी। लेकिन आपकी थर्ड प्लेस क्या है? सोशियोलॉजिस्ट यूज दिस आइडिया फॉर द प्लेसेस आउटसाइड होम एंड वर्क वेयर पीपल कैजुअली स्पेंड टाइम, लाइक कैफे, पार्क्स, लाइब्रेरी, नेबरहुड स्पॉट, कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगह जहां आपको किसी मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं करना पड़ता, आप बस चले जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ तो सुकून है भाई। और कभी कभी वहीं किसी से दोस्ती हो जाती है, वहीं किसी से फैमिलियर फेस को देखकर आपको लगता है कि यार ये तो यार ओ यू आर हेयर टू। सो एडल्ट लाइफ में फ्रेंडशिप का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मिलने की नेचुरल जगह कम हो गई है। तो कतर में आपकी थर्ड प्लेस क्या है? कोई कैफे, कोई कॉर्निश का कोई जगह, कोई जिम, या फिर बस आपको लगता है कि यार वो ठंडा ठंडा मौसम वापस आ जाए जो कि सिर्फ 4-5 महीने के लिए आता है, और उस टाइम पर मियां पार्क में बैठना या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई खाना खाना। सो कौन सी अब आपकी थर्ड प्लेस जहां आप बस मैं बन जाते हो कि आपको लगता है कि दिस इज रियल मी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल एम 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। नंबर सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. भाई आज इतनी सारी बातें की, स्पेशली ऑफिस रूल्स रेगुलेशंस ये सब बातें की, और एक रूल बना लीजिए ठीक है, रात के 2 बजे के बाद लाइव डिस्कशंस मत कीजिए. मतलब कई बार ऐसा होता है वीकेंड्स पे, मैंने लोगों को रातों में बात करते हुए सुना है जो दिन में प्रॉब्लम आती है. ओके आई विल फिगर दिस आउट. रात के 2 बजे मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, हम सडनली करियर रॉन्ग, रिलेशनशिप कन्फ्यूजन्स, फ्यूचर अनसर्टेन, ये सब समझने लगते हैं. और 15 मिनट बाद आप अपनी पूरी लाइफ का पोस्ट मतलब ऐसे काल के लिख के रख चुके होते हो. सो वाई? बिकॉज टायर्डनेस चेंजेस हाउ वी रेगुलेट इमोशंस एंड हाउ प्रॉब्लम्स फील टू अस. और रात में डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, तो जो थॉट्स दिन में बैकग्राउंड नॉइज था वही रात को फुल वॉल्यूम पर सुनाई दे रहा होता है. इसीलिए हर मिडनाइट थॉट को ट्रुथ मत समझिए ठीक है. कभी कभी आपको सॉल्यूशन नहीं स्लीप चाहिए होता है. एंड आई विल से कि अगर आप भी वीकेंड्स पे लेट नाइट तक फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हर बात को थोड़ा सा सॉल्यूशन के साथ देखिए, ना कि परेशान होके ठीक है. आप मुझे बताइए कि आप 2 AM ओवर थिंकर हैं या फिर सुबह उठकर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोगों में से आते हैं. बाय द वे मैं ये 2 AM ओवर थिंकर्स में ही हूँ. सुन रहे हैं आप रेडियो वाले 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट वाज. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो ऑल 106.3 एफएम आपको देता है सुपर हिट गाने और मुझे देता है सुकून. सो यहाँ पर बात करते हैं, ऑफिस की दुनिया में एक बटन है जो बटन इनोसेंट दिखता है, विच इज रिप्लाई ऑल. आपको एक मैसेज मिला, आप सोचते हैं कि बस एक पर्सन को रिप्लाई करना है, क्लिक सेंड. और फिर आप स्क्रीन देखते हैं, 47 पीपल, बॉस है, एचआर है, एंटायर टीम भी है, और आपका दिमाग कहता है कि बस अब कतर मतलब छोड़ना ही पड़ेगा लगता है. सो टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को इनक्रेडिबली फास्ट बना दिया है, लेकिन एक फनी प्रॉब्लम भी क्रिएट की है. पहले एम्बैरेसिंग बात एक रूम में 5 लोग सुनते थे, अब एक रॉन्ग क्लिक जो है वो 50 इनबॉक्सेस तक पहुंच सकता है. इसीलिए कभी कभी टेक्नोलॉजी का गोल्डन रूल याद रखिए, बिफोर यू प्रेस सेंड रीड इट वन मतलब मोर टाइम. ठीक है, आपको एक बार और पढ़ लेना चाहिए. और ऑनेस्टली आपके कभी रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग मैसेज भेजा है? मैंने तो ऐसा किया है. मतलब ऑफिस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैसेज पढ़ रहे होते हो, आपके दिमाग में कुछ होता है, लेकिन एकदम से कोई और मैसेज कर देता है और आप उसकी विंडो ओपन कर देते हो और फिर मैसेज गलत जगह पर जाता है. हालांकि ऐसे कुछ एम्बैरेसिंग नहीं था, बट कई बार मैंने ऑफिस में ऐसे लोगों को भी देखा है जो गलती से गलत किसी को व्हाट्सएप कर देते हैं और बाद में उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है. सो नो नेम्स रिक्वायर्ड. आप बस मुझे बताइए कि आपने ऐसा कभी किया है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063, दिस इज मुस्कान विद यू. शो का नाम है Midnight Lounge. Stay tuned to you, Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सो दिस इज मिड वीक राइट. और अगर आप अपनी टू डू लिस्ट देखें तो शायद आप मतलब आपको देखकर खुद आप कह देंगे कि गुड लक. मंडे को हम यू नो इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी, दिन ख़त्म हो गया है. सो कल अब ट्यूसडे आएगा तो आपको लगेगा कॉल दिस पर्सन, फिनिश दिस रिपोर्ट, ठीक है, रिप्लाई टू दिस ईमेल, टू दैट टास्क. वेडनेसडे आ जाता है और हम सिर्फ देखते हैं कि कितना बाकी है. बट आज मैं आपसे यही कहूँगी कि ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, टू डू लिस्ट नहीं डन लिस्ट बनाइए. आज क्या कंप्लीट किया, किस प्रॉब्लम को हैंडल किया, किस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को फेस किया, किस काम को फाइनली फिनिश किया. मे बी यू डिडंट फिनिश एवरीथिंग बट यू स्टिल मूव्ड फॉरवर्ड राइट. हमारी प्रॉब्लम कभी कभी ये होती है कि हम प्रोग्रेस को काउंट ही नहीं करते, सिर्फ पेंडिंग वर्क को काउंट करते रहते हैं. सो टुनाइट अपनी डन लिस्ट में एक चीज जरूर लिखना कि आई मेड इट थ्रू अनदर बिजी डे राइट. और बताइए कि आप आज की आपकी डन लिस्ट में नंबर वन अचीवमेंट क्या था. सेम नंबर पे 3311063 इज माय व्हाट्सएप नंबर. अभी मेरे जाने का टाइम हो गया लेकिन मैं हूं वहां व्हाट्सएप पे. सो फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. गुड नाइट. जियो बिंदास.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM Jio Bindaas.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें,
2: अब सुनिए

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

106.3 FM Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।